लाहियन अगर ती चार नानक ते मुख उजले ते सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे।

करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपो प्रकाश अमितोज कहिजे कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजे तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख शफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सो दम आपदा ते राखे गान का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो हो दास पाठ की लाज हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास काती अकिरत कहन मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बखसंदा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मन परतख गुरु निसतारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो दर्शन प्यासी दिन सरात

एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। बड़ा तेरा दरबार सचा तुद तखत सिर शाह पातशाह नेहचल चौर छत। बड़ी बड़ी बड़ा भार तेरा मर्तबा रंग प्रंग

0: गए मशक्कत काल नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: वाहे गुरु।

दरगह मान पावे पत सों जावे आगे दुख न लागे करेक ते आवे ता फल पावे जित सेवे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहौ, आप हाथ दै मोह बचावहौ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ली हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेता, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं।

सर्वेण पुञ्चन्ते महीपते दानं परापूरवेण पुञ्चन्ते महीपते विपरीतबुद्ध्यं मारतलोकः नानक चिरं काल दुख भोगते पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन मदानिया त्यो मथै त्रमराय नाम त्याइन साजना जनम पदारथ जीत नानक धर्म ऐसे चवह कीतो पवन पुनीत तन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जोद बिचारै देह अनित ननित रहै जस नाव चढ़ै भव सागर तारै धीरज धाम बनाय एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यो उजियारै ज्ञान है की बढ़नी मन हाथ लै कातरता कुतवार बुहारै शतरी को पूत हौं बामन को नह कै तप आवत है जो करो आर और जंजार जिते ग्रह को तोहि त्याग कहा चितता मैं तरो आब रीज कै देह वह हम कौ जो हौ बिनती कर जोर करो जब आओ कि औद निदान बने

है मरो तहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ। खीत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ।

महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए आब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रकाश सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण।

अवगुण करे एक गुण नाही, अमृत शॉट बिख बिख खाई, माया मो परम पै फूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसामदी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाह दशाहो, जिस पास बैठिया

भयो प्रगास सदा सुख मन मह। सतगुर पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद भीतर वसिया तो दुख भरम पहो भागा। भई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत चिंता सोच असोचा सोग लोभ मोह थाका। हौ मैं रोग मिटे किरपाते जमते पहे विबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, कहो नानक जिन जमते काढ़े। तिस गुर कै कुर्बाणी, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, कहो नानक जिन जमते काढ़े। तिस गुर कै

संत जनामन हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर

0: करता करना मैं ना जा हाँ करी न हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सुख सवाले जिन की ती सुपार पया कहु नान कर देखियां बातां जो किस करना सो कर रहा महला दूजा
1: जो शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जेको

कोट सैन संग सोब कहत मां जसोद जिसे धही पात कहे जियो देख रूप अतनोप मोह मां मग पई किंकणी शब्द चंदकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईस बम ज्ञान त्यान तरत ही चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास।

0: सतगुरु सतगुरु सतगुरु को बिंद जियो, बले छलन सबल मलन भगत फलन कान कुर, नेक लंक बजे डंक चढ़ो दल अरविंद जियो। राम रवन दुर दवन सकल पवन कुशल करन, सर्ब पूत आप ही देवाद देव सैस मुख फनिंद जियो। जरम करम मछ कछ हो बरा, जमना के कोल खेल खिलो जिन गिंद जियो। नाम सार हिय तार तज विकार मन गंद, सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो।
1: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर की मना परिय। ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए, अगहों गहयो नहीं जाए पूर सर्व।

मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला पंजवा पीड़ा मोकलाई कीतियाना

कारज आप सवार सो प्रभ सदा सभाल प्रभ मात पिता कंठ लाए दा लोहड़े बालक पाल दयाल होए सब जीव जंत्र हर नानक नदर निहाल महला पंजवा वेण तुद होर जय मंगणा

दातारं मनो न विसरं कड़ी न मोहत चसां तिस बिन न सरें अंतर बाहर संग किया को लोक करें जिस पत रखया पे सो पव जल तरें भगत ज्ञानी तबां जिस कृपा करें सो पूरा परधान जिसने बल तरे जिस है जराए आपे सोई अजर जरे सही मिलिया सच मंत्र गुर मन तरे जिस है जराए आ

मंतर गोर मन तर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला पंजवा पीड़ो मोकलाई कीतियान सब रखे कुटुंब नाल कारज आप सवार अन सो प्रभ सदा संभाल। राग राम कली की वार दूजी पौड़ी तीजी श्लोकां नाल

0: कृपा करे तैसा ही कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसम हुक्म बनाए सी, हुक्म मने होवे प्रवान त्या खसमे का महल पाए सी, खसमे पावे सो करे मन चिंदया सो फल पाए सी, तार दरगह पैदा
1: राम कली महला तीजा।

का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान।